0: दोहा को सारे गीतों का जैसा सारो वादा नहीं था
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हूँ था अबादो एकु गवो माँ बाउ तो भी

0: आजकल का प्यार कंफ्यूजिंग है, इसलिए कि चीज चाइनीज शेजवान मसाला डोसा, साला चेन्नई से चाइना सब कवर कर लिया लेकिन रहा कहीं का नहीं।
1: किसी के साथ तो लाइक मतलब प्यार तो वो होगा राइट?
0: पता कैसे चले? ये हार्ट बीट फास्ट हो जाना, नींद नहीं आना, भूख ना लगना, ये कैसे पता कि वो प्यार है कि गैस हो गई है?

0: टू फुल पिंक लाइंस लिखा हुआ है।
1: तुम एक एक, एक, एक और ट्राई कर लो।
2: तुम ट्राई कर लो ना, मेरा ब्लैडर खाली हो चुका है। इस बार भी नहीं रोकोगे मुझे?
3: अब क्या रोकने का फायदा, ना वो उम्र रही ना वो शहर रहा।
2: उम्र तो बस एक गिनती है परिमल।
4: तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना ये सब इंटू मिंटू करने का।
5: जी
4: देखो, तुम करोगे तो मैं भी करूंगी।
5: मैं करूंगा, तुम भी करोगी, पर मैंने मैंने किया तो नहीं है ना।
2: एटलीस्ट लुक एट मी ना व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू।
6: ये इंसान का इवोल्यूशन हो चुका है, कान से सुनते हैं आंख से नहीं।
7: किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है उसी एक इंसान के साथ।
2: You are a commitment phobic man child. डरते हो, फट्टू हो।
8: अनुराग बासु के फिल्म तो म्यूजिक की अबध स्वर मुहिम दौरे अदा कुराइच कवैर मी फिल्म के म्यूजिक तैयार को दीपवाणी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम लवतव गेलेंत संदीप श्रीवास्तव अनुराग शर्मा निलेश मिश्रा मयूर पूरी अदि अमिताभ बचरिया लियफ वायर गायफ द मशहूर शायरोंगे लेंतव सिमनाफवे फिल्म के साउंड ट्रैक दिबेक बहालगे नेरिफवायर एगे तेरेगे हिमने जमाना लगे दिल का किया अदि और मोहब्बत कितनी खरूं फद लवता की फिल्म के जज्बात का वर बोडक कुले बेलुन तेरेंगे हितका कुलेली लवतके शोगे मिहासाबो मिगेनेस्तेनी फिल्म के हिमनाफवा जमाना लगे मिलावा।

0: Attive FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Guess the dialogue. मेरे से बात कर।
2: क्या बात करूं मैं तेरे से?
1: क्या हुआ उसके?
2: अरे कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ।
1: तू कैसा है रे?
2: अरे तू कैसी है रे सफीना? तू मेरे को क्या बोली? तू दोबारा ये अल्टर पति नहीं करेगी? फिर क्या जाके की तू? तू अंदर जाते जाते बच्चे कुछ समझ में आ रहा है तेरे को?
1: तू मेरा छोड़, तू अपना बोल।
2: क्या है मेरा? क्या है कि मैं थक गया हूँ और मेरे से ये अभी नहीं होता है।
1: क्या क्या बोला तू? क्या नहीं होता तेरे से?
2: ये,
1: अरे ये क्या?
2: ये अपना जो भी है।
3: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है? मिसुआल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम पार गड़ सु मिनट कम में हफ्ता एक स्कूरी एक गेंदा बालाना साड़ी मिशो के गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिने सुआल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को इफार नगा गुरा तुम खास हादिया एली बेने एम में गिने सुआल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगानी कोमे महे गिवस एम में फाहुशोगा
1: गेस्ट द डायलॉग

0: Divehi FM, nu adihe 1 MHz.
1: Mi haftage mi filmi daturu miha hisabu nimmalang. Ummidkura mi haftage shoga mi himanali film taki ti e hunterin balaluma shaugere kan ufedi gendia film taka vanikama. Nimmamge kurin guest dialogue suala rangalu jawab fonoma handa kolladin. Jawab ta fonwani PSM e amedurko balalan sali showa. Kome mahakwes emme gina jawab rangalu kura faraato ge meduga naga guruatun hove nasiperi farataka aghuri namen ebadu kollan.
2: Guest the dialogue.
3: मेरे से बात कर.
4: क्या बात करूं मैं तेरे से?
3: क्या हुआ उसके?
4: अरे कुछ नहीं हुआ मेरी माँ.
3: तू कैसा है रे?
4: अरे तू कैसी है रे सफीना? तू मेरे को क्या बोली? तू दोबारा ये अल्टर पंती नहीं करेगी? फिर क्या जाके की तू? तू अंदर जाते जाते बचिए कुछ समझ में आ रहा है तेरे को?
3: तू मेरा छोड़. तू मेरा छोड़. तू अपना बोल.
4: क्या है मेरा? क्या है कि मैं थक गया हूँ और मेरे से ये अभी नहीं होता है.
3: क्या क्या बोला तू? क्या नहीं होता तेरे से?
4: ये
3: अरे ये क्या?
4: ये अपना जो भी है.
5: मी कौन फिल्म में गई? मैंने डायलॉग है मी सवाल के जवाब फणवाने पीएसएम में आमे दोरे को बालान साली शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम बार गड़ सु मिनट कौन में हफ्ता एक स्कूरी एक गिंदा बालालन साली मिशो के गणेशते केस्टर डायलॉग के एम में गिने सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को इफ़ार नगा गुरा तुम खास सहादिया एल्ली बेने एम में गिने सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगा नी कौन में महे गिवस एम में फाउश होगा
2: गेस्ट द डायलॉग
1: ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋಗವೆಸ್ ಹಂದಾನು ನುಫಿಲಾಫದ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾ ಮದಿ ಬಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಇತುರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಗೆ ಮೌಲು ಮಾತ್ ಕಿನಿ ಸಿನಿಮ ಮಿವಗುತ ತಿಯೇ ಹುಂತೆ ನವಕಿ ವೆಲಾನ ಎಮ್ಮೆ ಹುಂತೆ ಬಾಜವೆರಿ ವಗುತ್ ಕೊಳಕಂಗೆದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम असुरु नमादो वकुत
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

best. देखे मैं घर से वेफे मम्मी कटी का कुरिया मिगे नी टी टाइम रिक्वेस्ट मीशो मीशो फर्स्ट कटी तिरी हमें कुरिया दान मेद के शो का मालूम को हिस्सा को मम्मी दानी लिली मला कुरे गोतुंग लिली मल किए गए हिगे हम रीत का माका द मीर वह के सबब मुड़ी दुनिया के विस्वर मकबूल मदे के गुत का मिफा हाँ कुरनी मी मल के तफात गिन बावे तक नुआत वेराइटी तक हूं नई एगे तेरे का एम फाहा को लेनी मी वर गद मीर वह मिदुआ बोडेति लिली ओरियंटल लिली एम किया वतरु दें Lili Maliki gaitere zina tere kuruma shaa hadia dinu muga saa hama wara ginaang aamu ko bēnun kura maade mi wara gina baigge meduga hama wara makbool maade vizme. Deng mi Lili ge bai baavetaka nuni aamu veraiti taka bala laayruga kurins mi faha kuri. Oriental Lili mi wara boletiko fole maade mi wara warugada wara miiru vahen hunna baavate ge maade. Mi geturung Asiatic Lili mi wara gina kulakula ga fole maade hena mi ga miiru vahen nuhure. Deng Lili ge aamu baavetau ge terega kulayage baavetau ge terega hudukulaya dambukula faha ga kolewe. Deng ट्रम्पट लिदी किया बावत किस मी हम वरं आमु बावत के दिदिये मी वे सम मीर वहे दुआ मी लिदी के बावत मी मा हुननी ट्रम्पट नूनी अमु थाल फिली मी हुन कहला बट्टमक मी मा मी हुननी मेद के सुवाल की लिली मलुगे कुले बुने देशे मी सुवाल के जवाब फोनो मुंगे नवी फस करी तिरिया हमें फुर्सतो बे जवाब रंगल जवाब फोनो फरायतो के मेद गनगा कुरतलुं कुरिया दानी मी महुगे एम फहुम मी ओन टी टाइम रिक्वेस्ट मी शोगा गुरतुं होय फराताका इनामे लिबिगें ताने अनेकास मेसेज का मी जहिलानी मेसेज का मी ओती हाय एफएम कुदिंग किहिनें हाल एफएम कुदिंग के हाल वरर रंगर इंगे जहाल दी बल सयारा मी लवा मी गडीग अडवहा हुरिहा कुदिन इतुर मेसेज सबे आदी के फरातुं लिपवा मेसेज मी ಜಹಾಲ ದೀಬಲ ಹುವಫೆನ್ ದೆಕೇನಿ ಮಿ ಲವ ಮಿ ನವ ಹಾಸ ಕುರಾಣಿ ಮಿ ಗಡೀಗ ಎಫ್ ಎಂ ಅಡುವಹಮುಂದ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ನ ಎಮೆ ಫುರ್ತಮ ಮಿ ಜಹಾಲ್ ದೆನಿ ಸಯ್ಯಾರ ಮಿ ಲವ

तिमन रस खलांग खोफा लगवा हलाकु कुरवी कितक कितन रंग है ये फाहे रे गंडुगा नुवत मेंदुरु एवरे निदाफा तिब्बा इरत्तक तिमन रस खलांग आजाबाए।